दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह दार। उत्तम श्लोक साध के बचन मलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उदार अपतरा लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाक मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेवा। आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निबही खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसा सो होत निदान सर्वे इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुर न होवै अमन जान हर तन खाट चला जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने हो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरित शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भक्त कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिह जन आवै हर प्रभ चीत। जन्म मरण ता का दुख निवारा दुलभ देह तत्काल उदारा निर्मल सोभा अमृत ता की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परमा साध नाम निर्मल ता के कर्मा।

साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया। कहो नानक करते किया बातां, जो किश करना।

गहिरा कोई न जाने तेरा किता के बड़चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुध बिन सिद्धी करै ना पाईया कर मिलै नाही ठाकुर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिपती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखां जीवां विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ

पढ़ पढ़ की जाने। जबज कर करा करतारा प्रजा धरत तब देह पारा। जब आ कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ।

दीनी कहूँ फूल ना जाहूँ बैठा कहूँ सिमट पय शंकर कैठा तिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता

वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

वाह गुरु वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु गुरु वाह गुरु।

पुता माता की आशीष निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश निमुख न बिसरो तुमको हर हर सदा

अकाल मूर्त अजूनी सह फंगुर प्रसाद असमहला पहला वार श्लोक का नार श्लोक माले पहले के लिखे टुंडिया सराजे की धुनी श्लोक माला पहला।

शाम के सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे, सबको सच समावेर कह रहे आप भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय प्रश जाय नानक तो मुकुंत्र पाए जुज में जोर छली चंद्रा।

0: अपराधी दूड़ा निवे जो हंता मिर गए शीस निवाए क्या थी जर देख सुदे जाए महला पहला
1: पाठ पुस्तक संध्या बादंग सिर्फ पूछ सब अगले समाधंग।

सो हमरी रक्षा करें, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

कथा अष्टपदी साध का संग मुख उज्जल होतो, साध संग मल सगली कोतो, साधक संग मिटाय अमान, प्रसाद के संग प्रगटा सो ज्ञान। साध का संग बुझ है प्रभ नेराव, साध संग सब होत नबेराव, साधक संग पाए नाम रत्नऊ, साधक संग एक ऊपर जतनऊ, साध की महिमा वर्णा कौन प्राणी, नानक साध की शोभा परम्बा हिस्समानी। साधक संग गोचर मिलाए, साधक संग सदा पर फुलाए, साधक संग आवे बस पंचाओ, साध संग अमृत रस पंचाओ, साध संग हो सब की रे नो, साधक संग मनोहर बैन। साधक संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे, साधक संग माया ते भिन्न, साध संग माया ते भिन्न, साध संग नानक सो प्रसन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन संबीत। साधु कै संग महापनीतो, साध संग किसन नि बैरो, साध कै संग न बीगा पैरो, साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग नाही हो ताप, साधक संग तजा सब आप। आपे जन साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साधक संग न कब हुता वै, साध कै संग सदा सुख पावै, साध संग बस अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक संग बसै थानु चै, साधु

सदा निर्दो को जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समानु जैसे राजरंग को लाग तुलपवानो। ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक जो बसदा को खोदै को चंदन लेपो। ब्रह्म ज्ञानी का अह गनाओ नानक जो पावक का सह सुभाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगासो जैसे धरु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाहि अभान।

ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसो, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिनासो। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले ताबत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पलाओ, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फलाओ। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधारु, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवारु। ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेताओ, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिताओ। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंतो, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करें प्रयाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाय। ब्रह्म ज्ञानी को खो जाए महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाय अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मृत कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक। उड़ता जो अंतर नाम, सर मैं पेख है भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह पर सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्सो। परत्र रूप न पीखा नेत्र, साध की टहल संत संहेतो। करना सुन काहु किंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हराए, मन की बासना मन ते टर। इंद्री जित पंच दुख ते रह, तो नानक कोट मध्य को ऐसा परस। वैष्णो जे सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिचर की माया हुए ते भिन्न। कर्म करत हुए नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू पढ़ की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। मान तरंतर सिमरन गोपाल, सब होवर ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ है अबरा नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिन सगला भरम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत। मन तन अर्पै बिस्न प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित।

0: सलो
1: संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरन हार संत किन नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आर जा कटाए संत के दुखन जमते नहीं टुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक मह पाए संत का दुखन मत होए मली नौ संत के दुखन सो बाते ही नौ संत के हत्ते को रख न कोई संत का दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपाओ जी कराए नानक संत संग निंदक भी कराए संत के दुखन ते मुख पवाए संत के दुखन काग जोन लवाए संत के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिक जोन क्रिमाए संत के दुखन तृष्णा मैह जलाए संत के दुखन सब को छलाए संत के दुखन तेज सब जाए संत दो संत के दुख